अपनी सेवा प्रवान करें, जनता देव जो सदगुरु सैनी अर्जुन के बैठ के आप जी हरि जस द्वारा हरि कीर्तन द्वारा बरसाए जा रहे हैं, हरि नाम रूप मोती चुपके मनुख जीवन सफल बना रहे हैं। सदगुरु महाराज बख्श कर सारा दिखा दिए प्रजा तेला सारा के सिर के उत्ते बख्शिश बराहत रखन अंग संसाय देश प्रदेश रखा कर आओ जितनी संगत बैठी है गुरु पास रे चरना कमला चित जोड़ो छोलिया की अरदास बेनती करो सतगुरु जीओ कृपा करके अपने पवित्र नाम की खैर साड़ी छोलिया पाओ आओ सारे जपो कोई सना कर ना जाए।

संत साहिब श्री गुरु साहिब जी महाराज आप जी परम पवित्र बाणी का सत्कार करते हो। आप जी संत वालों बेअंत मैल हुई दाता जो सर्वत मुद्र गुरु को सिखी दाता सुमत पक्ष ने चढ़िया कला देश प्रदेश अमृत जगह।

मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दे अवगुण को न चितार दे गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी

जो कृपा गोविंद पई। वेन द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बिकेम मर्सीफुल, सुख संपत हर नाम फल पाए, सत गुर मिलई। वेन द लॉर्ड बिकेम मर्सीफुल, आई फाउंड पीस वेल्थ एंड द फ्रूट ऑफ लॉर्ड्स नेम, आई हैव मेट द ट्रू गुरु। अपुष्ट बात ते पई सीधरी, दूत दुष्ट सजनई। दैट विच वॉज अपसाइड डाउन हैज बीन सेट अपराइट, द डेडली एनिमीज एंड एडवर्सरीज हैव बिकम फ्रेंड्स। अंधकार में रतन परगासेओ, मलीन बुद्ध हछनई। इन द डार्कनेस द जूल श्राइन्स फोर्थ, एंड द इम्प्योर अंडरस्टैंडिंग हैज बिकम प्योर। जाओ कृपा गोविंद पई, वेन द लॉर्ड बिकेम मर्सीफुल, सुख संपद हर नाम फल पाए, सत गुर मिले। आई फाउंड पीस वेल्थ एंड द फ्रूट ऑफ लॉर्ड्स नेम, एंड आई हैव मेट द ट्रू गुरु। मोहे कृपन को कोय ना जानत, सगल पवन प्रगटई। नो वन न्यू मी द मिजरेबल माइजर, बट नाउ I become famous all over the world. Sang baithno kahi na paavat, hun sagal charan sevai. Before no one would even sit with me, but now all worship my feet. Aad aad ko firt tundte, man sagal trishan bujh gai. I used to wander in search of pennies, but now all the desires of my mind are satisfied. Ek bol bhi khavto nahi, saad sangat seet lai. I could not bear even one criticism, but now, in the saad sangat, the company of the holy, I am cooled and soothed. Ek ji gun kavan bukhane, agam, agam, agamai. What glorious virtues of the inaccessible, unfathomable, profound Lord can one mere tongue describe? Das, das,

दास को करियो जन नानक हर सरणई. प्लीज मेक मी द स्लेव ऑफ द स्लेव ऑफ योर स्लेव्स. सर्वेंट नानक सीक्स द लॉर्ड्स सेंचुरी. जाओ कृपा गोविंद, सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुर मिले.

कृपा करो, दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर, लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। Whatever you desire, you shall receive that reward, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jyot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his light within them. Jaisa likht likhya tur karte, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apana, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aave, mohe anth laptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस, बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुम वह करोगे तो तुम अपने ट्रू सेल्फ के नाल अपना रिश्ता गंढ रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गैट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावे उस दे विच होर भी चीजा हैं जो अगले कीर्तन च विचारियां जानदियां, उतना असं अपने ट्रू सेल्फ के नजदीक पहुंचते जावे, उतने ही शांत होंगे जावे, उतने ही ट्रैंकुल होंगे जावे, उतने ही स्टिल एंड साइलेंट होंगे जावे, उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है, रहे एकांत एको मन वसया आसा माहे निराशो. कहते वो सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हैं ज्यादा, क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हैं. एकांत का मतलब ये नहीं कि वो कल्ले हुंदे हैं, वो हुंदे हैं परमात्मा दे नाल, वो हुंदे हैं अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलूं, टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन, उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसे दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा माहे निराशो, उसकी यह अवस्था हो जाती है. गुरु चुप की खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.

कतहु सुचे तुह के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, ते फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी नहीं। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनू प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानू प्यार दिया, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है, लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाईए? ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा एही कुछ कह रहा सी, भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं।

सुल्तान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूं विचार अब विचार को विचारत हो, कहूं निज नारक पर नारके नकेत हो। कहूं बेदरीत कहूं ता स्यों बपरीत, कहूं

करके पिछा नाम अधारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग चक चक रहे देव दानम मुन छक छक।

भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भक्त रविदास जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देन वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत पे किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। ये सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिस दे द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसनगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

0: कहते हैं मैं परम गति पाले ही सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस दहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई, बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: कमले इधर उधर ना फिर

साथ संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वालों रूहानी जीवन वालों स्पिरिचुअल लाइफ वालों आत्मक जीवन वालों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है केंद्र साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदियां ही केंद्र ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जाता है उस दे विच भी रूहानी जीवन की शुरुआत हो जाती है साध के संग सदा प्रफुल्ल साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान दी जो सोल है ओ डिवेलप करती है ओ ब्लूम करती है इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करते हैं उस दे नाल सहमत हैं कि गुरुआ दी भगतां दी एक ही विचार है वो ये है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है वो सबना दा प्यारा है अगर उसनू मिलना है तो एक ही ढंग है वो है साध संगत प्रेम नाल बाव

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाकते हैं कि जो साधुओं का संग है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इसनू वरत लीए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभाव जोड़े हुए सन, सुभाव पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहते जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुत एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जिहड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हां, ते नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो, जेड़े गलत सुभाव पक चुके सन। आलस का सुभाव गलत है, निंदा का सुभाव गलत है, चुगली का सुभाव गलत है, होमे का सुभाव गलत है, उच्चा बोलन का सुभाव गलत है, कौड़ा बोलन का सुभाव गलत है। ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सकते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसनों सुनो फिर उसका असं अर्थ करांगे।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नरक कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हों त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे ओढ़े वस्त्र का